0: तेजस्वी यादव, दैट इज हिज विधानसभा सीट एंड दैट इज व्हाई ही आल्सो सोल्ड हिज कंडोलेंस एंड टुडे ही विल गोइंग टू विजिट दैट प्लेस. इवन द यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान आल्सो सोल्ड हिज कंडोलेंस बिकॉज दैट एरिया इज कम्स अंडर हिज पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी. सो दिस इज अ वेरी सैड एंड इंसिडेंट. पीपल आर एजिटेटिंग अगेंस्ट द डीएम ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो. लास्ट नाइट डीएम सोज द people vote against him and that is why the whole incident which took place in Vaisali is very saddened. Right now we are on the way to the ground zero.
1: Right, Ramar, of course, you know, we'll keep coming back to you as and when more information comes in, but that definitely is some devastating information that we are tracking from Bihar early this morning, where we understand that in fact children have passed away after a boat capsized in the river Ganga. All right, now moving on to more stories coming in at this hour. Well, the political face-off over the special intensive revision of electoral voter rolls is now in fact escalating. After Rahul Gandhi's street fight, Home Minister Amit Shah has now hit back. The Home Minister has in fact accused Rahul Gandhi of using SIR to deflect attention from repeated electoral losses. Citing the BJP's latest wins in Gujarat, Amit Shah has now challenged the Congress leader to introspect and even warned him and even has asked him in fact to brace for another massive loss in 2029. Rahul Gandhi, the leader of opposition of Lok Sabha, has called the latest face-off as a fight to save the democracy. Well, he has said that the fight will go on, even as the BJP and Amit Shah call it an excuse for political failure. Well, as the battle over election commission turns into a war of contrasting political narratives, the confrontation is showing no signs of backing down.
2: भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और मोदी जी की लोकप्रियता को आप SIR का परिणाम कहकर झुटलाते हो. आपको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पांडिचेरी के चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई. फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते. पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो. मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है. आपकी वहां कोई रीच नहीं है. कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता ने नकारा है, हराया है. भारत की जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है. 29 में प्रचंड हार के लिए फिर से एक बार मन बना लीजिए. 2029 के आम चुनाव में NDA प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आने वाला है और कांग्रेस की फिर से एक बार लगातार चौथी बार हार होने वाली है. इस देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, BJP के साथ है, NDA के साथ है.
3: द पीपल हु हैव डन दिस, मिस्टर मोदी हु इज द मेन आर्किटेक्ट, मिस्टर अमित शाह हु इज द इंप्लीमेंटर, मिस्टर ज्ञानेश कुमार एंड अदर्स. They need to understand that the net is closing around them. It is not going to be so simple that you can destroy the Indian Constitution and get away with it. This is about the people of India. This is about the future of the people of India. And we, all of us together, because we love you, and we respect you, are going to fight to the end to restore democratic process in this country. मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस प्रकार से हम सब ने मोबिलाइज किया, जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से हमने मोबिलाइज किया, जिस यूनिटी के साथ हमने मोबिलाइज किया, उसी प्रकार से हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे.
4: अगर सही माने में उनके पास कोई प्रूफ है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, अगर सही माने में कोई वोट चोरी का प्रमाण है उनके पास, तो कोर्ट को क्यों नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं दिया? अरे यहां की तो इतनी बेवकूफी है कि एक पिटिशन

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे.
1: अ वर्डिक्ट कैन चेंज अ बिजनेस. अ लॉ कैन रीशेप एन इंडस्ट्री. अ रेगुलेशन कैन क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी और अ रिस्क. बिकॉज व्हाट हैपेंस इन कोर्ट्स कुड हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन योर बिजनेस. जॉइन मी एज आई डीकोड व्हाट लीगल डिसीजंस मीन फॉर मार्केट्स, बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज. Closing argument only on NTV Profit.
0: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
2: The sharpest global voices decode a world between orders. Dr. Swarnim Wagle, General David Petraeus, Swami Sarvapriyananda, Mike Walsh, Nicholas Butts, at the NDTV World Summit, A World Between Orders, 22nd and 23rd October, only on NDTV.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: irrespective of the role institutions play. This as the Home Minister's remarks come amid a heavily criticized crackdown by the Delhi police, the RAF, and other central forces, all of whom operate directly on the Home Ministry's orders. And this as the government has also withdrawn Jantar Mantar status as a designated protest site following days of protests there. Listen in to the crucial reactions we've lined up for you.
1: भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता मोदी जी की लोकप्रियता को आप SIR का परिणाम कहकर झुटलाते हो. आपको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पांडिचेरी के चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई. फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते. पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो. मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है. आपकी वहां कोई रीच नहीं है. मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, SIR के बहाने घुसपैठिया बचाने का आपकी जो कार्य योजना है उसको देश की जनता भली भांति समझ चुकी है और अब भारत की जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है.
2: द पीपल हु हैव डन दिस, मिस्टर मोदी हु इज द मेन आर्किटेक्ट, मिस्टर अमित शाह हु इज द इंप्लीमेंटर, Mr. Gyanesh Kumar and others, they need to understand that the net is closing around them. It is not going to be so simple that you can destroy the Indian Constitution and get away with it. This is about the people of India. This is about the future of the people of India. And we, all of us together, because we love you and we respect you, are going to fight to the end to restore democratic process in this country. मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस प्रकार से हम सब ने मोबिलाइज किया, जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से हमने मोबिलाइज किया, जिस यूनिटी के साथ हमने मोबिलाइज किया, उसी प्रकार से हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे.
3: अगर सही माने में उनके पास कोई प्रूफ है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, अगर सही माने में कोई वोट चोरी का प्रमाण है उनके पास, तो कोर्ट को क्यों नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं दिया? अरे यहां इनकी तो इतनी बेवकूफी है कि एक पिटीशन भी ठीक से फाइल नहीं कर सकते. युवा हमारे साथी बोलते हैं, डेलुलू इज द सोलुलू. ये माइंडसेट, ये जो मानसिकता इनकी, इसको डेल्यूजन में रहने के वाले जो लोग हैं उनको ये डेल्यूजन में ही सोल्यूशन दिखता है. डेलुलू इज द सोलुलू. और इसीलिए कई लोग मानते हैं कि राहुल गांधी स्वयं सबसे बड़े रेड फ्लैग है. ही इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग जिसके कारण कांग्रेस बार बार हार रही है.
4: अगर वो सही माने में मानते हैं इलेक्शन कमीशन ने ईमानदार व्यवस्था नहीं रखी है, तो क्यों नहीं रिजाइन करते हैं इनके 6 के 6 मुख्यमंत्री? तुरंत रिजाइन करना चाहिए.
5: हम आपको अगला प्रोग्राम क्या है इसके बारे में भी बताएंगे, और जो 4 दिन में जो प्रोग्राम्स इंडिया गठबंधन के ओर से चलाया गया, राहुल जी और दूसरे नेता भी इसको बहुत ही गंभीरता से लेके जनता के समस्याओं को सुलझाने के लिए वो काम किए, और बहुत ही बढ़िया सक्सेस आपने देखा होगा. शायद ही इतनी बड़ी संख्या में लोग कभी नहीं जुड़े दिल्ली में. ये पहली बार है जो खुद अपने आप को सारे नौजवान लोग, साथियों, सभी लोग मिलके आए, आप देखे हैं. फिर उसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता. जो मोदी का प्लान है वोट चोरी का, उसको पूरा एक्सपोज करने के लिए सारे लोग तैयार हो गए।
6: सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी, अमित शाह और मोदी जी के इशारे पे हम सब लोग एकजुट हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, और इसके लिए जो कुर्बानी देना होगा हम सब लोग जो है मिलकर के देंगे। ये देश गांधी जी का देश है, ये देश लोहिया जी का देश है, ये देश भगत सिंह का देश है, ये देश कर्पूरी ठाकुर जी का देश है, और इस देश को जो लोग संवैधानिक संस्था है जो इस देश की, उसको हाईजैक करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन और ज्ञानू गुप्ता जी तो और आगे बढ़कर के चले गए 10 कदम। जिस हिसाब से एक कठपुतली की तरह ज्ञानेश गुप्ता जी ने जो काम किया है उसको जो है सजा ज़रूर मिलेगी। ये लोग बचने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग डरे हुए लोग हैं।
0: Meanwhile, a showdown is brewing over Jantar Mantar in the national capital after the Delhi police denotified the iconic protest site. The Congress, along with other opposition leaders, have hit out, with Rahul Gandhi vowing to challenge this decision, saying people must have the right to express their democratic concerns. The police, on the other hand, say the move follows the Supreme Court direction to identify alternative protest venues, but with opposition leaders demanding Jantar Mantar be reopened, the battle over where people can protest is far from over. You see, Ramlila Ground, Burari Ground, CBD Ground, they have been named as alternative venues, but police are yet to issue SOPs for protests there. And meanwhile, we're also picking up on reports that there aren't even any dates left in this calendar year as far as Ramlila Maidan is concerned to book that site for the protest. And activists are saying Jantar Mantar's proximity to parliament is crucial to making their voices heard. Here's what Rahul Gandhi has to say.
7: Our commitment to you that the people who have done this, Mr. Modi, Mr. Shah, Mr. Ganesh Kumar, the lady who's hiding right now in Dehradun, and others are going to be brought to justice.
8: देखिए, डिसाइडेड तो अभी तुरंत नहीं है कि क्या डेट होगा, क्या होगा, क्योंकि उनका कहना है कि जो भी फाइनल होगा सभी पार्टी लीडर्स से बात करने के बाद ही होगा। लेकिन एक मुद्दा नया आया है जिसको लेकर आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट होगा, जो है जंतर मंतर को बंद कर दिया जाना। क्योंकि देखिए, इतने वर्षों से जंतर मंतर एक ऐसी जगह है देश की राजधानी में, दिल्ली में, जहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग या ट्रेड यूनियन के लोग, स्टूडेंट्स, सभी आते हैं और अपनी बात रखते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। अब केंद्र सरकार जिस तरह से उसे बंद करके कोई और वेन्यू बता रही है, रामलीला मैदान और कहाँ कहाँ, कि वहाँ जाके प्रोटेस्ट करो। वहाँ पे रामलीला मैदान तो ऐसे भी सालों भर बुक्ड रहता है, एक आध दिन कहीं महीने में खाली है, फिर उसमें 1 लाख से ऊपर का पर डे का चार्ज रखा गया है।
9: गवर्नमेंट हैज डी नोटिफाइड जंतर मंतर, वी स्ट्रांगली कंडम दिस। जंतर मंतर शुड रिमेन as place for our protest by the people, because earlier Rajpath we used to have protest, it was banned. Earlier we used to have protest in Parliament Street, it was banned. Now Jantar Mantar, then where do they want people to go? The national capital people. So we strongly condemn the denotification of Jantar Mantar. We will fight to regain the Jantar Mantar for the place for protest by the people.
0: All right, let's turn our attention now to the latest updates we are tracking. The Mamata faction of the Trinamool Congress has alleged that a woman tried to attack the former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee outside her residence in Kolkata's Kalighat as she stepped out to inaugurate a Durga Puja pandal. But that's now triggered a political response from the BJP, and Dilip Ghosh has reacted, questioned Mamata Banerjee's account and also told her to rest. The BJP seems to be dismissing Mamata Banerjee's claims. It's being seen as political mockery. Just listen in to Dilip Ghosh's reaction on behalf of the BJP.
10: हमेशा वही बोलती हैं। उन्होंने क्या किया जनता को मालूम नहीं है, उनके ऊपर कहां कैसे

0: टक जाता, किसी को मालूम नहीं। घर में वो गिर जाती, कोई बोलता धक्का मार दिया, खुद बोलती है चोट लगी है, किसी को मालूम नहीं है। तो ये कैसे खुद हार गई वो भी उनको मालूम नहीं है। इस स्थिति में उनको थोड़ा आराम करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, देखना चाहिए जनता क्या चाह रही है।
1: My colleague Hrithik Mondal has been tracking all the finer details. He joins us live at the moment. Hrithik, has the police complained or filed any sort of complaint regarding the matter, any FIR yet? Take us through the TMC and the BJP's account of what really played out as well.
2: Well, this is another slugfest that is beginning between BJP and Trinamool Congress. You have just heard Bengal Minister Dilip Ghosh. In a way, he tried to mock former Bengal Chief Minister Mamata Banerjee over the alleged attack. So far, the police investigations are concerned. What we are given to understand, following Dola Shen, TNC MP lodged in a police complaint with Kalighat police station, action was taken. The accused person, who has been identified as Anushua Shaha, a civic volunteer, she has been detained and the questionings are underway. Though we are yet to know that whether police have lodged an FIR or going to arrest that lady, but in the video which have been circulated by Trinamool Congress, as they allege that this particular woman carrying a sharp weapon, she tried to attack Mamata Banerjee when she stepped out at her Kalighat residence last evening in order to inaugurate a Durga Puja. And that amid this ruckus, somehow police personnel deployed over there and the other TNC men, they grabbed that woman and took away her from Mamata Banerjee. But a serious allegation has been labeled by Trinamool Congress. Police says that they are following the further in the course of investigations. And amid a situation, what we can see, that BJP has hit out at Mamata Banerjee and Dilip Ghosh suggested former Chief Minister to take rest. Back to you.
1: Hrithik, as always, thanks so much for joining us with the latest details. All right, in other news, the Jammu and Kashmir Waqf Board's proposal to introduce common themes for Friday's sermons across its affiliated mosques and religious institutions has triggered a political controversy, with Chief Minister Omar Abdullah and the PDP President Mehbooba Mufti and several religious and political figures opposing the move. You see, the board has urged imams to address social issues through their sermons, triggering strong opposition from the National Conference along with the PDP. Omar Abdullah has termed the move an unacceptable attempt to interfere in religious affairs, while PDP's Mehbooba Mufti has categorically questioned the board's role, demanding that it be handed over to the Jammu and Kashmir government.
3: हमारे सरमन्स, हमारा दीन जो है, जो जुमा का खुतबा हमारा होता है, जिसमें हमारे इमाम और खतीब जो बहुत ही नॉलेजेबल हैं, वो उस दिन सरमन देते हैं। उसमें एक तो हमारा जो खुतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है, उसके बाद हमारे इमाम और खतीब बात करते हैं, अपने जो उनका ऑडियंस होता है, ऑडियंस होते हैं जो नमाज पढ़ने वाले आते हैं, उनसे वो बातचीत 2-5 मिनट करते हैं। उन्होंने एक जुबान में कहा कि समाज में वाकई प्रॉब्लम्स है, हमें इस पे बात करनी चाहिए, और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के साथ वो हैं। ये वो इंडिपेंडेंट स्कॉलर्स, जो हमारे प्रीचर्स हैं, जो हमारे सरमन्स देते हैं, ये उनका डिसीजन है कि हम समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे।
4: जो वो मौजूदात उन्होंने तय किए हैं, जो वो तय करें, अगर वो किसी हद तक वाकई में मुखलिस हैं, तो उसके लिए फिर मैं ये कहूँगा कि शायद मुत्तफिका उलमा कॉन्फ्रेंस जो है हमारी JNK में, यानी फिर उसमें हर खित्ते के उलमा को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। नहीं, मंजूर नहीं। हमें जहाँ तो ये है, जो खदशात हैं वो दूर किए जाएं। अगर वो खदशात उन्होंने उस वक्त ऑनलाइन भी हमने जो सवाल किए थे उन्होंने दूर नहीं किए, बल्कि हमें चुप करा दिया। अगर उसी वजह से ज़्यादा हमें खदशात कुछ लग रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं वापस उन्हें।
5: पहले बोला UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसी तरह आप यूनिफॉर्मिटी इसमें भी, ये देखिए, ये मस्जिदें जो हैं, ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है एक, ये मस्जिदें जो बनी हैं ये हमारे अकीदे के पैसे से बनी हैं, और यहाँ मौलवी जो हैं, जो इमाम हैं, वो जानते हैं उनको क्या बात करनी है। तो अब ये एक ऐसा सिलसिला चालू करना चाहते हैं जिससे BJP के दफ्तर से, RSS के दफ्तर से इंफॉर्मेशन आएगी कि आज के खुतबे में हमारे मौलवी साहब क्या बोलेंगे। ये तो किसी तरह से हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये जो वक्फ बोर्ड है, पहले भी हमने जो वक्फ बिल आया था उसके खिलाफ हमने रेजोल्यूशन लाया असेंबली में, हम उसकी मुखालफत करते हैं। और किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को ये हक नहीं है कि वो किसी भी दीन में चाहे उसमें इस तरह की मुदाखलत करें।
6: ये कैसा एक ऑर्डर है कि जहां आज आप इमामों को, हमारे खतीबों को भी ये बोलेंगे कि आपको बोलना क्या है? तो मुझे लगता है बड़ा अफसोस की बात है। अब बीजेपी डिसाइड करेगी कि हमारे मेंबर पे क्या कौन से खुतबा होगा। मुझे लगता है ये बिल्कुल इस ऑर्डर को वापस ले जाना चाहिए। और दूसरी चीज़, शायद ये जो इनकी मैडम है, इनको एक आदत हो गई है कि जो ये आजकल के मौलवी हैं वो उनकी तारीफ़ करते हैं। मेंबर उसके लिए नहीं है, मेंबर है रसूल इसलिए है कि आप लोगों को जो सरकमस्टांसेस है, जो सिचुएशन है, उसके ऊपर बात करें और इस्लाम की तालीमों पे बात करें। मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, ना मैं, मुझे इसके ऊपर कोई ये है, लेकिन आम आदमी जुमा की नमाज में जाता है और खुतबा सुनता है। मैं चाहता हूं कि मैं जब वहां जाऊं मैं कुछ सीखूं, इस्लाम के बारे में सीखूं।
1: Well, on that note, we're slipping into a very quick break. We've got all the latest updates lined up for you in a moment, including the fact that the India Bloc's protest against Gyanesh Kumar in Chennai tomorrow is taking on added political significance with TDK Vijay's party.
7: Going beyond what's said, getting to the reality behind the rhetoric.
8: Also, the police action.
7: Taking questions where they matter most.
9: The question is, language ke baat kare.
7: Urgent, exact, empathetic.
10: There is no fire escape. There is no alternative safety route.
7: Because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.
11: Hindustan mile, Hindustan se.
12: Desh ka tire, JK tire.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: कंडक्ट लगाया हुआ है.
1: गोइंग बियॉन्ड व्हाट सेड, गेटिंग टू द रियलिटी बिहाइंड द रेटोरिक.
0: एनीवन मैसेज ऑफ यूनिट
2: आमा स्वामी जाके जे भाव हत्या कर ले ताबे फांसी दवा तो छी.
0: ऑल्सो द पुलिस एक्शन,
1: टेकिंग क्वेश्चंस वेयर दे मैटर मोस्ट.
3: द क्वेश्चन इज लैंग्वेज की हम बात करें.
1: अर्जेंट, एग्जैक्ट, empathetic.
0: There is no fire escape. There is no alternative safety route.
1: Because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.

0: scant respect for rules and laws of our land. And this is the same Rahul Gandhi who participated in a joint press conference with Prashant Bhushan. And what did Prashant Bhushan say a day back? He said that his only option was bloodshed. So Rahul Gandhi's statements very clearly only expose his dangerous inclination to somehow grab power by hook or crook. And Rahul Gandhi's anarchic antics, you've seen, over the week, whether it is trying to make statements like this, trying to stoke inside people. His antics have been criticized across the nation. And this statement, what he's making now, and his actions over the last week only show Rahul Gandhi's utter contempt for constitutional values. And look at how he's conducted himself. He's a leader of opposition. Shoving aside a pregnant journalist, inappropriately manhandling a female police personnel, Rahul Gandhi shunted an insult to an elected chief minister. He brutally punched people.
1: The BJP, they're taking on Rahul Gandhi. Now, a showdown is brewing over Jantar Mantar in the national capital after the Delhi police has denotified the iconic protest site. The Congress and other opposition leaders have hit out, with Rahul Gandhi vowing to challenge the decision, saying people must have the right to express their democratic concerns. The police say the move follows a Supreme Court direction to identify alternative protest venues. But with opposition leaders demanding Jantar Mantar to be reopened, the battle over where people can protest is clearly far from over. Ram Leela Ground, Burari Ground and CBD Ground have been named as alternative venues, but the police is yet to put those SOPs in place for protests. Activists say Jantar Mantar's proximity to Parliament is crucial to ensure that their voices can be heard.
2: देखिए डिसाइडेड तो अभी तुरंत नहीं है कि क्या डेट होगा क्या होगा, क्योंकि उनका कहना है कि जो भी फाइनल होगा सभी पार्टी लीडर्स से बात करने के बाद ही होगा. लेकिन एक मुद्दा नया आया है जिसको लेकर आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट होगा, जो है जंतर मंतर को बंद कर दिया जाना. क्योंकि देखिए इतने वर्षों से जंतर मंतर एक ऐसी जगह है देश की राजधानी में दिल्ली में, जहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग या ट्रेड यूनियन के लोग, स्टूडेंट्स सभी आते हैं और अपनी बात रखते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं. अब केंद्र सरकार जिस तरह से उसे बंद करके कोई और वेन्यू बता रही है, रामलीला मैदान और कहाँ कहाँ, कि वहाँ जाके प्रोटेस्ट करो. वहाँ पे रामलीला मैदान तो ऐसे भी सालों भर बुक्ड रहता है, एक आध दिन कहीं महीने में खाली है. फिर उसमें 1 लाख से ऊपर का पर डे का चार्ज रखा गया है.
3: गवर्नमेंट हैज डी नोटिफाइड जंतर मंतर. वी स्ट्रांगली कंडम दिस. जंतर मंतर शुड रिमेन as place for our protest by the people, because earlier Rajpath we used to have protest, it was banned. Earlier we used to have protest in Parliament Street, it was banned. Now Jantar Mantar, then where do they want people to go? The national capital people. So we strongly condemn the denotification of Jantar Mantar. We will fight to regain the Jantar Mantar for the place for protest by the people.
4: चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है. ऐसे में विपक्ष को अगर शिकायत है तो एक बार कम से कम प्रयास तो करें. जैसे सीजीआई से जा मिलने का इन लोगों ने प्रयास किया, सीजीआई ने स्पष्ट कहा कि मामला विचाराधीन है, मुलाकात नहीं हो सकती. महामहिम से इन लोगों ने मुलाकात की. एक बार चुनाव आयोग ने जाकर मुलाकात प्रतिनिधि मंडल के साथ कर कम से कम अपने प्रश्नों का जवाब तो लेने का प्रयास करें. सिर्फ सड़क पे विपक्ष के द्वारा इस तरीके का हंगामा किए जाना, ये कहीं से भी उचित नहीं है. और आपको समाधान नहीं चाहिए तो ये विपक्ष की सोच भी गलत है. दिल्ली को बंधक इन लोगों ने इतने दिन से बना के रखा हुआ है.
1: And a political firestorm has erupted over Home Minister Amit Shah's 2029 poll win remark ahead of the Lok Sabha elections. Union Home Minister Amit Shah has predicted a massive victory for the NDA. Shah has also targeted Rahul Gandhi, saying the Congress is headed for its fourth consecutive defeat. Pawan Khera from the Congress has questioned Home Minister Shah's confidence about the 2029 verdict. Khera also raised questions about Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar's tenure. He asked how Shah could be so confident of a victory in 2029 and challenged the Home Minister to step out onto the streets and witness public anger without police presence.

0: राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी एसआईआर के बहाने घुसपैठिया बचाने का आपकी जो कार्य योजना है उसको देश की जनता भली भांति समझ चुकी है और अब भारत की जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। श्री राहुल जी और उनके साथियों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 29 में प्रचंड हार के लिए फिर से एक बार मन बना लीजिए। 2029 के आम चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आने वाला है और कांग्रेस की फिर से एक बार लगातार चौथी बार हार होने वाली है।
1: अब यूं तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आते आते बहुमत लाते लाते 50-60 साल लग गए, फिर क्या कहें हम? ये अजीब सी टिप्पणी है साहब कि कांग्रेस कई राज्यों में इतने सालों से, भाई आप तो देश में कितने सालों तक नहीं थे, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? फिर कहते हैं 29 भी हम जीतेंगे, क्यों इतना भरोसा है ज्ञानेश पर? और ज्ञानेश रहेगा 29 तक? ये चुनाव आयोग जिस तरह से चल रहा है हम चलने देंगे 29 तक? कि इतना भरोसा हमारी बात साबित करते हैं ये बात कहकर, तो वो कि 29 में भी हम जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हो साहब? सड़क पे तो निकलकर देखो, गुस्सा तो देखो लोगों का आकर, हटाओ पुलिस और आकर देखो गुस्सा।
2: अमित शाह जी अपने फॉर्म में नहीं थे, म्यूनिसिपल चुनाव स्थानीय चुनाव उसको जीत को वो ऐसा प्रस्तुत कर रहे थे जैसे उन्होंने भारत जीत लिया। अरे अमित शाह जी, आपसे कहना चाहता हूँ, चुनावी मशीनरी का इस्तेमाल करके, प्रशासन का इस्तेमाल करके बहुत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपने जीते हैं, पर जिसको आप 1,000, 2,000, 10,000, 15,000 की भीड़ कर रहे हैं उसे मीडिया से पूछिए, खुद आंखें देखिए, जो उनमें उत्साह था, जज्बा था, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तानाशाह हमेशा यही गलती करता है, जज्बा नहीं समझता। आज हिंदुस्तान का जो यहाँ दिल्ली आया था या नहीं आया था, उसका यही जज्बा है कि हम आपको ज्ञानेश कुमार की बेईमानी से, जो आपने किया है, लोकतंत्र खत्म नहीं होने देंगे, संविधान छीनने नहीं देंगे।
3: And once again, breaking news coming in. The Harvard community has come out with a statement. They are saying that silence cannot be an excuse for indifference. Constitutional institutions must be respected at all times. Sweeping accusations cannot substitute for evidence. Due process and institutional accountability matter. Public trust in democratic institutions must be protected. Our commitment must remain to the Constitution. Justice, not selective outrage, must prevail. Democratic institutions, not the politics of accusation. So that's what the Harvard community is saying at this point. I'm just going to quickly recap what they've said before we go to our correspondent Aishwarya. They have said silence cannot be an excuse for indifference. Constitutional institutions must be respected at all times. Sweeping accusations cannot substitute for evidence. So, of course, they're talking about the protests that have been taking place in the national capital against the Chief Election Commissioner, Gyanesh Kumar. Then they go on to say due process and institutional accountability matter and public trust in democratic institutions must be protected. Our commitment must remain to the Constitution. Justice, not selective outrage, must prevail. Democratic institutions, not the politics of accusation, should prevail. That's the reaction coming in from the Harvard community at this point, at a time when we have seen a series of protests in the national capital against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. We have seen protests at Jantar Mantar. We have seen protests even outside the Election Commissioner's office. And we have even seen a march to the Supreme Court as well. So at a time when a series of protests have been taking place, you have the Harvard community coming out. I think the biggest takeaway from their statement is justice, not selective outrage, must prevail. We're going to try and get Aishwarya live on the story at this point to give us more details. This is the Harvard community that has come out with the statement stating that public trust in democratic institutions must be protected. Aishwarya now joins me live. Aishwarya, just decode for our viewer this Harvard community statement that has come in, because on one hand they say public trust in democratic institutions must be protected and justice, not selective outrage, must prevail.
4: Well, that's absolutely right. In fact, there is

0: कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगाया हुआ है.
1: गोइंग बियॉन्ड व्हाट्स सेड, गेटिंग टू द रियलिटी बिहाइंड द रेटोरिक.
0: एनीवन मैसेज ऑफ यूनिट
2: हमारे सामने जाके जे बाबू हत्या कर लेता तो फांसी दवा तो उचित.
0: ऑल्सो द पुलिस एक्शन,
1: टेकिंग क्वेश्चंस वेयर दे मैटर मोस्ट.

0: इस लैंग्वेज की हम बात करें?
1: अर्जेंट, एग्जैक्ट, एम्पैथेटिक.
0: देयर इज नो फायर एस्केप, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव सेफ्टी रूट,
1: बिकॉज व्हेन इट रियली मैटर्स समवन हैज टू आंसर. द बक स्टॉप्स हियर. वीकडेज 8 PM ओनली ऑन NDTV. व्हेन इट रियली मैटर्स.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात.
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है.
4: अरे मेरे राजा.

0: Gyanesh Kumar will continue till the 2029 polls. The TVK to be part of India Bloc protests against poll body in Tamil Nadu tomorrow. India Bloc demands CEC Gyanesh Kumar's resignation. Sex for marks charge against Congress MP Akoy Jam. BJP women delegation to meet women's panel chief seeks strict action against Akoy Jam. Asks why is Congress not sacking him as an MP of the party. Punjab opposition tears into Bhagwant Mann after anti-drug activist is killed in Mansa. Opposition demands Mann's resignation while bulldozers raise home of the accused. 13 killed after boat carrying about 15 to 20 people capsizes in Ganga in the state of Bihar. 7 hospitalized. SDRF teams, divers continue search and rescue operations. A big international focus, Saudi national Al-Fuzan arrested for planting recording device at OpenAI office. He allegedly wrapped a USB device in toilet paper and inserted it into television located in an executive conference room. But a top focus, CJP leaders Ashutosh Ranka and Saurav Das have been sent to Tihar jail for 5 days after being arrested for protesting at the Jantar Mantar. They were produced before a magistrate at the SEM court located at Mandir Mar police station. Both leaders were arrested on the charges of trespassing and violation of previous arrest bond. Remember, 14 Cockroach Janata Party members were detained yesterday for trespassing and scaling the walls of Jantar Mantar. The CJP founder Abhijit Dipke has spoken out on the arrests and called this a cowardly attack and an attempt to crush dissent. As per Delhi police, Saurav Das and Ashutosh Ranka are repeat offenders and have breached the bail bond.
1: देश में इमरजेंसी लगानी है, इमरजेंसी करनी है तो ऑफिशियली करो ना। ये क्या कायरो की तरह अनऑफिशियली आप इमरजेंसी कर रहे हो, जहां पर आप लोगों को जंतर मंतर पर तिरंगा लहराने के लिए 5 दिन हिरासत में ले रहे हो। ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था। तिरंगा लहराना इस देश में कब से बड़ा इतना पाप हो गया कि उसके लिए आप लोगों को 5 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हो। तो नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूँ, इतने बड़े कायर मत बनो, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। अगर इमरजेंसी लगानी है तो ऑफिशियली लगाओ, दम है तो।
2: आपको पता होगा आज आशुतोष, सौरभ दास और मैं और हमारे साथ सीजीपी के वॉलंटियर्स हम जंतर मंतर की ओर गए थे और हमने बस भारत का झंडा लहराया और भारत माता की जय बोला। तो इसके लिए इस मोदी शाह के तानाशाही सरकार ने सौरभ और आशुतोष को 5 दिन के लिए जेल में भेज दिया है। ये तानाशाही सरकार का अंत होके रहेगा। आज आशुतोष का बर्थडे था, उसके बर्थडे के दिन उन्होंने भारत माता की जय और तिरंगा का झंडा लहराने के लिए उनको जेल में भेज दिया है। मेरा ये पूरे देश की जनता से कहना है कि इस सरकार ने अपने सिस्टम का यूज करते हुए, अपने अधिकारों को, गलत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट्स का तोड़ने की कोशिश शुरू की है। मेरा आपसे सबसे कहना है कि हम सबको एक साथ आकर इस तानाशाही सरकार का अंत करना होगा।
3: दिल्ली पुलिस की तरफ से ये दलील दी गई कि इन्होंने जो इनका बॉन्ड था उनका वायलेशन किया है, इनका उनका प्रेजम्पशन है कि ये फिर से ऐसा कर सकते हैं और जो इन्होंने किया है वो कानून का उल्लंघन है, 163 का उल्लंघन है। उनके हिसाब से पहली बार एक उनका कहना है कि पब्लिक बॉडी, पब्लिक प्रॉपर्टी को ट्रेसपास किया गया है विदाउट प्राइवेट कंप्लेन एंड फाइलिंग दी कंप्लेन। दिल्ली पुलिस ने खुद कॉग्निजेंस ले लिया है और उसके अगेंस्ट में एक्शन लेके और जिस केस के रेफरेंस में या जो उसके लिए सेपरेट कंप्लेन फाइल हुई है, जो बताया गया है कि कनॉट प्लेस में उसमें सेपरेट कंप्लेन फाइल हुई है, उसको यहाँ पे यूज़ करते हुए, इसका मिसयूज़ करते हुए अपनी पावर अथॉरिटी का 5 दिन की जेसी को जेसी में भेजा है।
0: My colleague Soumya now joins me live. Soumya, you have Rahul Gandhi and other opposition leaders backing the CJP leaders who've been jailed for the protests. But let's just quickly also talk about what options the CJP leaders have while they are in 5-day judicial custody. Legally, can they challenge being in jail for 5 days?
4: Well, Vedika, you've correctly pointed out that several opposition leaders have come out in support of the CJP leadership, who has been sent to 5 days of judicial custody. Now, there are several grounds on which this judicial custody decision was announced by the SCM court at Mandir Marg police station earlier today. It clearly states that it was a clear-cut breach of the surety bond that Ashutosh Ranka and Saurabh Das had signed last week on a Sunday, which barred them from being part of any such protest for next 1 year. So they, yesterday, in the early hours of Tuesday, they tried trespassing Jantar Mantar, which has now been denotified as the official protest site, using a private premises. So keeping these things into consideration, they were sent to 5 days of judicial custody. They were called repeated offenders. And now, coming back to what legal options lies ahead of them, one legal option that lies ahead of CJP leadership and also their legal team is that they can approach the court regarding their bail if the court agrees to hear any bail hearing and also goes ahead with granting bail to the said two CJP leaders. Then they will have the option of walking out of Tihar jail even before they complete their 5 days of judicial custody.
0: All right, Soumya, thanks for tracking the developments there in the national capital. You have both the CJP leaders in 5 day judicial custody and they are inside Tihar jail. Moving on now, let's just take you through the other developments on the story. Politics has erupted over the arrest of CJP leaders Saurabh Das and Ashutosh Ranka. Rahul Gandhi and other opposition leaders have slammed government over their arrest. Rahul Gandhi has slammed their arrest and said that Jantar Mantar belongs to people and no one can be jailed for unfurling the tricolour or holding peaceful protests. The DMK, the Sena UBT, the Mamata Banerjee faction of the TMC all have called out the government. Former Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has said that they will provide all kind of support to the CJP leaders, whereas Mamata Banerjee's TMC's faction's MP Abhishek Banerjee called this Pakistanified of Bharat. Meanwhile, Delhi Chief Minister Rekha Gupta lashed out at CJP and called them the B team of the Aam Aadmi Party and said that they have never raised issues related to the state of Punjab.
5: देखिए ये अराजक पार्टियां हैं और अराजक नेता हैं. कभी वो रिपोर्टर को मारते हैं जो बेचारी प्रेग्नेंट है, कभी वो पुलिस पे हाथ उठाते हैं, कभी अपने ही कार्यकर्ता को पीटते हैं. इन्हें केवल मैं में संतुष्टि है, ये दिखने चाहिए, इनकी बात केवल होनी चाहिए, सत्ता में बैठने चाहिए. इसके अलावा देश की सेनाओं पे ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, देश की पुलिस पे ये हाथ उठाते हैं, रिपोर्टर्स की आवाज ये बंद करते हैं और आम जनता का सदैव ये नुकसान करते हैं.
6: कोई भी विरोध में उठी हुई आवाज भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं और उससे डर जाते हैं, तो ये उस पर वो कदम उठाते हैं जो सख्त होता है और सख्त के साथ डराने वाला. अब कि उनका सामना ऐसे विपक्ष से कांग्रेस के नेतृत्व में पड़ा है जो ना आपकी पुलिस से डरती है, ना आपकी गोलियों लाठियों से डरती है, ना आपके पिलेट से डरती है. हम भारत के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, वोटिंग राइट को बचाने के लिए तब तक संघर्ष करेंगे जब तक आपने बेईमानी से चुनाव जीतने के लिए जिस ज्ञानीस का इस्तेमाल किया वो हट नहीं जाता, बैलेट पेपर दोबारा नहीं आता, SIR समाप्त नहीं हो जाती, हमारा संघर्ष जारी है.
0: A showdown is brewing over Jantar Mantar in the national capital after Delhi police denotified the iconic protest site. The Congress and other opposition leaders have hit out, with Rahul Gandhi vowing to challenge the decision, saying people must have the right to express their democratic concerns. The police say the move follows the Supreme Court direction to identify alternate protest venues. But with opposition leaders demanding Jantar Mantar to be reopened, the battle over where people can protest is clearly far from over. Ramlila Ground, Burari Ground and CBD Ground named as alternative venues. The police are yet to issue SOPs on the protests that can be held there. And activists say Jantar Mantar's proximity to parliament is crucial to making their voices heard.
7: देखिए डिसाइडेड तो अभी तुरंत नहीं है कि क्या डेट होगा क्या होगा, क्योंकि उनका कहना है कि जो भी फाइनल होगा सभी पार्टी लीडर्स से बात करने के बाद ही होगा। लेकिन एक मुद्दा नया आया है जिसको लेकर आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट होगा, जो है जंतर मंतर को बंद कर दिया जाना। क्योंकि देखिए इतने वर्षों से जंतर मंतर एक ऐसी जगह है देश की राजधानी में दिल्ली में, जहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग या ट्रेड यूनियन के लोग, स्टूडेंट्स सभी आते हैं और अपनी बात रखते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। अब केंद्र सरकार

0: जिस तरह से उसे बंद करके कोई और वेन्यू बता रही है, रामलीला मैदान और कहाँ कहाँ, कि वहाँ जाके प्रोटेस्ट करो। वहाँ पे रामलीला मैदान तो ऐसे भी सालों भर बुक्ड रहता है, एक आध दिन कहीं महीने में खाली है, फिर उसमें 1 लाख से ऊपर का पर डे का चार्ज रखा गया है।
1: गवर्नमेंट हैज डी नोटिफाइड जंतर मंतर, वी स्ट्रांगली कंडम दिस। जंतर मंतर शुड रिमेन एज प्लेस फॉर अवर प्रोटेस्ट बाय द पीपल, बिकॉज़ अर्लियर राजपथ वी यूज्ड टू हैव प्रोटेस्ट, इट वाज बैन। अर्लियर वी यूज्ड टू हैव प्रोटेस्ट इन पार्लियामेंट स्ट्रीट, इट वाज बैन। नाउ जंतर मंतर, देन वेयर डू दे वांट पीपल टू गो? The national capital people. So we strongly condemn the denotification of Jantar Mantar. We will fight to regain the Jantar Mantar for the place for protest by the people.
2: चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, ऐसे में विपक्ष को अगर शिकायत है तो एक बार कम से कम प्रयास तो करें। जैसे सीजीआई से जा मिलने का इन लोगों ने प्रयास किया, सीजीआई ने स्पष्ट कहा कि मामला विचाराधीन है, मुलाकात नहीं हो सकती। महामहिम से इन लोगों ने मुलाकात की, एक बार चुनाव आयोग में जाकर मुलाकात प्रतिनिधि मंडल के साथ कर कम से कम अपने प्रश्नों का जवाब तो लेने का प्रयास करें। सिर्फ सड़क पे विपक्ष के द्वारा इस तरीके का हंगामा किए जाना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और आपको समाधान नहीं चाहिए तो ये विपक्ष की सोच भी गलत है। दिल्ली को बंधक इन लोगों ने इतने दिन से बना के रखा हुआ है।
3: A political firestorm has erupted over Home Minister Amit Shah's 2029 poll win remark ahead of the Lok Sabha elections in 2029. The union minister has predicted a massive victory for the NDA. Amit Shah has also targeted Rahul Gandhi, saying the Congress is headed for its fourth consecutive defeat. Pawan Khera from the Congress has questioned the Home Minister's confidence about the 2029 verdict. He has also raised questions about the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar's tenure. He asked how Shah could be so confident of a victory in 2029 and challenged the Home Minister to step out onto the streets and witness public anger without police presence.
4: राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, एसआईआर के बहाने घुसपैठिया बचाने का आपकी जो कार्य योजना है उसको देश की जनता भली भांति समझ चुकी है और अब भारत की जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। श्री राहुल जी और उनके साथियों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 29 में प्रचंड हार के लिए फिर से एक बार मन बना लीजिए। 2029 के आम चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आने वाला है और कांग्रेस की फिर से एक बार लगातार चौथी बार हार होने वाली है।
5: ही कैन ड्रीम एनीथिंग बट दैट आर गोइंग टू बी द नाइट मेयर फॉर हिम, बिकॉज व्हाट इफ इज गोइंग टू हैपन इन दिस कंट्री, टू No need to wait for 29. Before that itself, change will come in India. People are now asking for a change. Therefore, you see the body language of Amit Shah yesterday. If any confidence is in, is only he is meeting you people only. There is no question by you. You are asking so many questions to Rahul Gandhi every day. But any question allowed to him by Amit Shah? Therefore, he is not having any courage. Yesterday that also established.
6: अब यूं तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आते आते बहुमत लाते लाते 50-60 साल लग गए, फिर क्या कहें हम? ये अजीब सी टिप्पणी है साहब कि कांग्रेस कई राज्यों में इतने सालों से, भाई आप तो देश में कितने सालों तक नहीं थे, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? फिर कहते हैं 29 भी हम जीतेंगे, क्यों इतना भरोसा है ज्ञानेश पर? और ज्ञानेश रहेगा 29 तक? ये चुनाव आयोग जिस तरह से चल रहा है, हम चलने देंगे 29 तक? कि इतना भरोसा, हमारी बात साबित करते हैं ये बात कहकर, तो वो कि 29 में भी हम जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हो साहब? सड़क पे तो निकल कर देखो, गुस्सा तो देखो लोगों का आकर, हटाओ पुलिस और आकर देखो गुस्सा।
3: We're going to go back to Punjab where I believe that there are locals who burned the accused home, the man who shot the Punjab anti-drug activist. परविंदर सिंह जोटा, दिस इज

0: Individual also right now stated, whose name is Chanchal Yadav. She alleged that her ear was also, you know, under the shoe of a police officer who tried to crush her ear. She alleged that she was dragged along with the road and kicked. She also further claimed that she was beaten inside the police station as well. So these are the kind of allegations that are being leveled up by these students right now who are the part of this protest. And Rahul Gandhi is also, in fact, you know, in a way boosting their morale, saying that the youth of the country's youth is with the whatever is happening in this. The country's youth is actually supporting the cause for which Rahul Gandhi is fighting right now, say it be it on the streets or for that matter Chhatru Ki Gunj as well.
1: All right, we also have a reaction coming in. Do stay with me, Tejshree.
2: सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इनको इलीगली डिटेन नहीं करना है प्रोटेस्टर्स को, पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, पर मेरे को बजरंग दल और आरएसएस के गुंडों के बोलने पे डिटेन किया गया. मेरे पास उनका वीडियो है जहां पर वो थ्रेटन कर रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्टर्स को. उनके हाथ में डंडे हैं, उनके हाथ में पत्थर है, और वो सब होने के बावजूद वही सेम गुंडे जाके पुलिस को बोलते हैं, और पुलिस सुप्रीम कोर्ट की ना सुनने के बजाय उन गुंडों की सुन के उन्होंने मेरे को ब्रूटली डिटेन किया. और डिटेंशन बस में मैंने देखा कि वो कैसे लोगों को मार मार के अंदर घुसा रहे थे, और काफ़ी लोग थे जिनका उन्होंने फ़ोन भी छीना पुलिस ने, और फ़ोन फॉर्मेट करके वापस दे दिया, और बहुत लोगों के फ़ोन छीन लिए और कभी वापस दिए भी नहीं. प्लस मेरी डिटेंशन बस में कम से कम 15 फीमेल्स थी और एक भी फीमेल ऑफिसर नहीं थी.
3: अच्छा, एक बात बताओ, ये हाथ में क्या पकड़े?
2: ये बेसिकली 20 जुलाई को भी मेरे सर पे डंडा मारा था एक आरएफ वाले सर ने.
3: तो आपका रिस्पांस क्या है डंडे का? रिस्पांस तो कैसा मेरा, आप
2: डंडे का रिस्पांस डंडा ही है मेरा, पर ये थोड़ा प्यार वाला डंडा है, उनका थोड़ा नफरत वाला डंडा.
3: कैसे होता है?

0: तक वाकई में मुखलिस हैं, तो उसके लिए फिर मैं ये कहूँगा कि शायद मुत्तफिका उलमा कॉन्फ्रेंस जो है हमारी जेएनके में, यानी फिर उसमें हर खित्ते के उलमा को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। नहीं, मंजूर नहीं। हमें जहाँ तो ये है जो खदशात हैं वो दूर किए जाएं। अगर वो खदशात उन्होंने उस वक्त ऑनलाइन भी हमने जो सवाल किए थे उन्होंने दूर नहीं किए बल्कि हमें चुप करा दिया, अगर उसी वजह से ज़्यादा हमें खदशात कुछ लग रहे हैं इसलिए हम चाहते हैं वापस उन्हें।
1: पहले बोला UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसी तरह अब यूनिफॉर्मिटी इसमें भी। ये देखिए, ये मस्जिदें जो हैं, ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है एक, ये मस्जिदें जो बनी हैं ये हमारे अकीदे के पैसे से बनी हैं, और यहाँ मौलवी जो हैं, जो इमाम हैं, वो जानते हैं उनको क्या बात करनी है। तो अब ये एक ऐसा सिलसिला चालू करना चाहते हैं जिससे BJP के दफ्तर से, RSS के दफ्तर से इंफॉर्मेशन आएगी कि आज के खुतबे में हमारे मौलवी साहब क्या बोलेंगे। ये तो किसी तरह से हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये जो वक्फ बोर्ड है, पहले भी हमने जो वक्फ बिल आया था उसके खिलाफ हमने रेजोल्यूशन लाया असेंबली में, हम उसकी मुखालफत करते हैं। और किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को ये हक नहीं है कि वो किसी भी दीन में चाहे उसमें इस तरह की मुदाखलत करें।
2: ये कैसा एक ऑर्डर है कि जहाँ आज आप इमामों को, हमारे खतीबों को भी ये बोलेंगे कि आपको बोलना क्या है, तो मुझे लगता है बड़ा अफसोस की बात है। अब BJP डिसाइड करेगी कि हमारे मेंबर पे क्या कौन से खुतबा होगा। मुझे लगता है ये बिल्कुल इस ऑर्डर को वापस ले जाना चाहिए। और दूसरी चीज़, शायद ये जो इनकी मैडम है, इनको एक आदत हो गई है कि जो ये आजकल के मौलवी हैं वो उनकी तारीफ करते हैं, मेंबर उसके लिए नहीं है। मेंबर है रसूल इसलिए है कि आप लोगों को जो सरकमस्टांसिस है, जो सिचुएशन है, उसके ऊपर बात करें और इस्लाम की तालीमों पे बात करें। मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, ना मैं, मुझे इसके ऊपर कोई ये है, लेकिन आम आदमी जुमा की नमाज में जाता है और खुतबा सुनता है। मैं चाहता हूँ कि मैं जब वहाँ जाऊँ मैं कुछ सीखूँ, इस्लाम के बारे में सीखूँ।
3: In disturbing news from the state of Bihar, a tragedy unfolded in Vaishali district of the state after a boat carrying 15 to 20 people who were going to attend a banquet capsized in Ganga. At least 13, including children, have died in this tragedy. The rescue operation is ongoing and the administration is monitoring the situation. Prime Minister Narendra Modi condoled the death of the victims. Bihar Chief Minister Samraj Chaudhary announced financial assistance of 4 lakh rupees for the families of the victims.
4: Right now I am sitting at the boat which took the lives of 13 people in Bihar's Vaishali district. This is a boat, this is not an appropriate boat. As you can see, there is a vessel and that is why the boat is sank in the middle of the river, and in that incident 30 people got dead. Most of the people got injured and they are referred to the Patna, but almost more than 20 people were on board and they are going for a community fest and that side of the river. And this is a government boat provided by the Bihar government in the flood situation area. As you can see, this whole area is still flooded, but this is a very big loophole of the district administration. That is why 13 people lost their lives. But you can see that boat is not in a good condition, a vessel is right out there, that is why this boat is sank in the middle of the river. But the question is, where is the district administration? The people right out here is complaining about this boat continuously to change this boat, but no action is being taken from the district administration.
5: देखा गया है कि जिस घर में वो लोग जाना चाह रहे थे भोज के लिए, उसकी कनेक्टिविटी वहाँ जो मेन रोड है उससे है, और अगर उस रास्ते को उपयोग किया जाता तो ये दुर्घटना नहीं होती। लेकिन एक बहुत ही दुखद घटना है और इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल है उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
6: नाव को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकारी नाव थी, 3 साल से इसकी मरम्मत नहीं हुई थी, आप क्या कहेंगे? आप जिलाधिकारी है, क्या आपके नॉलेज में था ये?
5: देखिए, ये जो रिपोर्ट हमें प्राप्त है प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से, वो ये है कि ये प्राइवेट नाव है और जिनके नाम से रजिस्टर्ड है उसकी सूचना प्रशासन को प्राप्त हो गई है, उसके आधार पर अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पर्यवेक्षण जिन पदाधिकारियों के द्वारा किया जाना था और उनके द्वारा नहीं किया गया है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है।
3: And with that, we're sipping a short break. I'll be back with international news, especially from Saudi Arabia, given the Houthi attacks that have been continuing for a couple of days now. In moments from now, more on that with a detailed report.

0: कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगाया हुआ है.
1: गोइंग बियॉन्ड व्हाट्स सेड, गेटिंग टू द रियलिटी बिहाइंड द रेटोरिक.
0: एनीवन मैसेज ऑफ यूनिटी.
2: हमारा स्वामी जाके जे भाव हत्या कर ले ता दिल फांसी दवा तो ची.
0: Also the police action,
1: taking questions where they matter most.
3: The question is language ki hum baat kar rahe hain.

0: ऑफ कॉन्डक्ट लगाया हुआ है.
1: गोइंग बियॉन्ड व्हाट सेड, गेटिंग टू द रियलिटी बिहाइंड द रेटोरिक.
0: एनीवन मैसेज ऑफ यूनिट
2: আমার স্বামী রাখে যেভাবে হত্যা করলে তাদের ফাঁসি দেওয়া উচিত.
0: Also the police action,
1: taking questions where they matter most.
0: The question is language ki hum baat kare.
1: Urgent, exact, empathetic.
0: There is no fire escape. There is no alternative safety route.
1: Because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात.
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है.
3: अरे मेरे राजा.

0: transporting or acting as a courier to pick up drugs from the specific location from where it is dropped near the border and then hand it over to other courier guys in the in that entire drug nexus. From and we know that when drug is received near the border, either the BSF or the Punjab police is responsible for manning that, but how it reaches from the border areas to different parts of Punjab is something which the security agencies will try to unravel after a joint interrogation with the accused constable.
1: All right, thanks so much, Ghazali, for joining us with those details. So a constable there arrested with 15 kilos of heroin. Now, in other news, the cabinet has approved, it's a bonanza for railway employees. The cabinet has approved a 78-day productivity-linked bonus for railway employees. The bonus announced as a Diwali gift for the railway staff, and the total financial outlay for the bonus will be 2,009 crores. 37,000 permanent jobs have already been provided in the railways. This was announced by Union Minister Ashwini Vaishnaw.
2: Cabinet mein aaj sabse pehle रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए स्टाफ के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस 78 डेज का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया. ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो कि हम लोग जब त्यौहार में रहते हैं तब वो फील्ड में ट्रैक पे लोगों के अंदर वर्कशॉप के अंदर दिन रात मेहनत करते रहते हैं. उन सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए ये दीपावली का उपहार है. करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है, 2009 करोड़ रुपए का. रेलवे में मैसिव रिक्रूटमेंट चल रहा है, भर्तियाँ करीब 1,65,000 भर्तियां निकली हुई है जिस पर एग्ज़ाम लगातार चल रहा है. अब तक करीब करीब 37,000 एम्प्लॉयमेंट रोजगार पक्की नौकरी दी जा चुकी है रेलवे में इसी पिछले कुछ समय में ही.
1: All right, so Diwali bonus for the railway employees, lucky them. And that's it from me for the moment. News and updates continue right here on NDTV. Thanks so much for watching.

0: कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगाया हुआ है.
1: गोइंग बियॉन्ड व्हाट्स सेड, गेटिंग टू द रियलिटी बिहाइंड द रेटोरिक.
0: एनीवन मैसेज ऑफ यूनिट
2: हमार सामने जाके जे भाव हत्या कर ले तब फांसी दवा तो छी.
0: Also, the police action.
1: Taking questions where they matter most.
3: The question is, language ki hum baat kare?
1: Urgent, exact, empathetic.
0: There is no fire escape. There is no alternative safety route.
1: Because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.

0: में यहाँ कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगाया हुआ है.
1: गोइंग बियॉन्ड व्हाट्स सेड, गेटिंग टू द रियलिटी बिहाइंड द रेटोरिक.
0: एनीवन मैसेज ऑफ यूनिट
2: हमारा स्वामी जाके जे भाव हत्या कर लेता दे फांसी दवा तो ची.
0: Also, the police action.
1: Taking questions where they matter most.
3: The question is, language ki hum baat kare.
1: Urgent, exact, empathetic.
0: There is no fire escape. There is no alternative safety route.
1: Because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.

0: anti-drug voice silenced in Punjab. What is going on in this war against drugs that the government of Punjab claims? We'll get you the details on that as well. But let's begin with this breaking news, which is coming in at this moment, right on top of 6 o'clock. Indian Youth Congress Chief Uday Bhanu Chib has filed a petition in the Delhi High Court challenging the denotification of Jantar Mantar as a protest site. This petition has been filed by the Indian Youth Congress. In this application, already there is a pending in the court regarding the denial of its request to hold protest against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. So, remember Rahul Gandhi had yesterday said that they will continue their fight to reclaim Jantar Mantar as a protest site. Remember, Jantar Mantar has been denotified by the government, which is right in the heart of the national capital, just 2 kilometers away from the parliament. And the other three sites which have been notified as the official protest site, the closest now is the Ramlila Maidan, which is 6 kilometers away from the parliament. I want to very quickly at this moment go across to Mr. Uday Bhanu Chib. He is the president of the Indian Youth Congress. He's joining us at this moment. He has filed this petition. Thank you so much, Mr. Chib, for speaking to us. I want to understand from you, what is your prayer as far as this petition in the High Court is concerned, and when will it be taken up in the court?
1: So it is very simple that to protest in Jantar Mantar is our right, constitutional right. और कोई भी government हमसे ये right नहीं छीन सकती। अगर आज नरेंद्र मोदी जी को लग रहा है कि उन्होंने बहुत गलतियां कर दी हैं और लोग उनकी गलतियों को, उनकी चोरियों को रेस कर रहे हैं और जंतर मंतर छीन कर वो बच जाएंगे तो वो गलत फहमी में है। जंतर मंतर किसी का भी नहीं है, वो हमारे देश के लोगों का है, हिंदुस्तानियों का है। और अगर कोई भी लॉ बनाकर जंतर मंतर छीन रहे, इससे पता चलता है ये सरकार, बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी जी, वो डरे हुए हैं और हमें दबाने के लिए, प्रोटेस्टर्स को दबाने के लिए, देश के यूथ और स्टूडेंट्स की आवाज को दबाने के लिए चीजें कर रहे हैं। जंतर मंतर से क्या प्रॉब्लम है? आप प्रोटेस्ट
0: लेकिन दबाना चाहते लेकिन छिप साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार ने कहा है कि भाई शुरुआत में राहुल गांधी और आपकी पार्टी की मांग ये थी कि आप लोग चाहते थे कि एक कोई प्रोटेस्ट साइट आपको दिया जाए ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने में। सरकार कह रही है 3 प्रोटेस्ट साइट हमने दिए हैं, आप उनमें से कोई भी चुन सकते हैं, तो जंतर मंतर को ही क्यों इसका बैटल ग्राउंड बनाया जा रहा है?
1: नहीं, हम स्टार्टिंग से कह रहे हैं हमें जंतर मंतर चाहिए। 25th ऑफ सितंबर को यूथ कांग्रेस ने एप्लीकेशन दिया था पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में कि हमें जंतर मंतर चाहिए, 20 दिन के लिए चाहिए, हमें वहां पे प्रोटेस्ट करना है, पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। अब वो उनके ऊपर है, वो हमें 2 दिन के लिए दें, 20 दिन के लिए दें, लेकिन दें तो। लेकिन 1st of October को उन्होंने हमारी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी। उसके बाद ये जुडिशियल में भी ये हमने केस किया कि जंतर मंतर हमारा राइट है, तो उसके बाद इन्होंने ये लॉ ही ऐसा बना दिया कि रिडिफाइन कर दिया कि जंतर मंतर नहीं मिलेगा, तो ये गलत है। इससे पता चलता है कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और डरी हुई ये सरकार है।
0: okay.
1: लेकिन जंतर मंतर को हम रिक्लेम करेंगे, दिस इज अवर राइट।
0: सो हैज दिस हैपेंड आफ्टर जो राहुल गांधी ने कल कहा था कि जंतर मंतर को भी वापस देने की लड़ाई जारी रहेगी, उसके बाद आपने ये फैसला लिया है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मुझे लगता है काफी 10-15 दिन से ज्यादा समय हो गया, आई थिंक 10-15 दिन से पहले का टाइम है जब हमने ये किया। और राहुल जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, आज भी हम जंतर मंतर मार्च करने वाले थे, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली पुलिस का जो वायलेंस चल रहा है पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर,
0: okay.
1: तो फिर हमें पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन का घेराव करना पड़ा। नहीं तो आज भी हमने पूरा कोशिश था कि जंतर मंतर को रिक्लेम करें, जिस तरह से राहुल जी कह रहे थे।
0: All right, thank you so much, Mr. Chib, for joining us on NDTV. He's the petitioner as far as this application is concerned. My colleague, Srishti, is joining me at this moment. Srishti, politically, of course, the parties have been saying, whether it is the CJP, the Aam Aadmi Party, the Congress, now the IYC as well, that Jantar Mantar is something that they would want to reclaim. What happens after this petition has been filed? When it will be taken up? And is there a legal way to, in fact, try and get this denotification junked of our Jantar Mantar?
2: Well, Ankita's Mr. Chib himself just said they want to reclaim Jantar Mantar as a designated protest site, which is also something that they have said in their application that Jantar Mantar should be

0: कॉन्डक्ट लगाया हुआ है.
1: गोइंग बियॉन्ड व्हाट्स सेड, गेटिंग टू द रियलिटी बिहाइंड द रेटोरिक.
0: एनीवन मैसेज ऑफ यूनिट
2: আমার স্বামী যাকে যেভাবে হত্যা করলে তাদের ফাঁসি দেওয়া তো উচিত.
0: Also the police action,
1: taking questions where they matter most.
0: The question is language ki hum baat kare.
1: Urgent, exact, empathetic.
0: There is no fire escape. There is no alternative safety route.
1: Because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात.
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है.
3: अरे मेरी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे।
3: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाह मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।

0: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे द शार्पेस्ट ग्लोबल वॉइसेस डीकोड अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स डॉक्टर स्वर्णिम वागले जनरल डेविड पेट्रियस स्वामी सर्वप्रियानंदा माइक वॉल्श निकोलस बक्स एंड द एनडीटीवी वर्ल्ड समिट अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स 22nd and 23rd October, only on NDTV. Meetha, ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
1: Dr. Roma, manual winding, 4 logon ke paas hai.
2: Kuch isse bhi anokha.
1: Kamla pasand, sirf ek anokha swad. Kamla pasand paan masala.

0: A verdict can change a business. A law can reshape an industry. A regulation can create an opportunity or a risk. Because what happens in courts could have a direct impact on your business. Join me as I decode what legal decisions mean for markets, businesses, and investments. Closing argument, only on NTD Profit.
1: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे द ओनली फीमेल बेसिस्ट टू बी रैंक्ड अमंग म्यूजिक रेडार्स टॉप 10 बेसिस्ट्स ऑफ द 21st सेंचुरी फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड स्टेज मोहिनी दे हैज मेड द बेस हर वॉइस मीट हर एट द एनडीटीवी वर्ल्ड समिट अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स 22nd एंड 23rd अक्टूबर न्यू दिल्ली मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
2: जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है
1: द शार्पेस्ट ग्लोबल वॉइसेस डिकोड अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स डॉक्टर स्वर्णिम वागले General David Petrius, Swami Sarvapriyananda,

0: Jantar Mantar along with their other party leaders and waved the tricolour there. Subsequently, they were booked for trespass, disturbing public peace and inciting other people. Adding fuel to this joint mission was an altercation between NSUI members and a woman cop while they were being detained yesterday. Today, Rahul Gandhi met with these student wing members who were part of the protest and declared that from now on, this is going to be a united, singular offensive against a dictatorial government. Listen.
1: ये शेरनी है, जान रहे हो उसको? ये शेरनी है, इसको मारा, डर लगा?
2: नहीं लगा सर, हाँ? नहीं लगा, नहीं लगा।
1: नफरत थी दिल में?
2: नफरत नहीं थी, प्रेम था, जितना मारा हमने ये बोला, खुला आज मन जितना है उतना भर के मारो।
3: इन चंचल यादव जी ऐसा करती है कि वो मेरे गले को जोर से दबा के मुझे पुश कर देती है ताकि मैं पीछे जाके सीट पे पीछे गिर जाती हूँ और फिर मुझे मेरे मुंह पे ऐसे मतलब स्क्रेच मतलब पूरे नाखूनों से पूरा स्क्रेच करके तो वो मेरे जोर से बाल पकड़ लेती है और बाल पकड़ने के बाद वो कंटिन्यू मुझे मतलब बस में आगे पीछे करके चंचल यादव बोलती है कि तुम लोगों को तो ज्यादा नेती है ना हम लोग बनाते हैं तुम देखो अभी नेती तुम्हारी नेतागिरी पूरी झाड़ते हैं हम लोग
4: चंचल यादव एंड अदर 3 or 4 पुलिस ऑफिसर्स वेंट इन द बस एंड ड्रैगन मी इन द रोड दे पंच मी हियर मेरा Live and continuously beaten my pura cheek. Then they started to kick my private part and also underbelly and back belly also.
1: एक protest है, एक आवाज है, देश की आवाज है, और उस आवाज को कबाने की कोशिश हो रही
5: है। सारे protest जो है वो एक ही cause के लिए लड़ रहे हैं। हम सबका एक ही cause है, वो ये है कि जो ज्ञानेश कुमार election rig कर रहा है। और नरेंद्र मोदी की मदद कर रहा है उनकी पावर में बने रहने के लिए हम उसके खिलाफ सारे ही लड़ रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी एक इंडिपेंडेंट प्रेशर ग्रुप है और वो हमेशा इंडिपेंडेंट प्रेशर ग्रुप ही रहेगा लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इंडिया ब्लॉक के खिलाफ है
6: कोई भी विरोध में उठी हुई आवाज भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं और उससे डर जाते हैं तो ये उस पर वो कदम उठाते हैं जो सख्त होता है और सख्त के साथ डराने वाला
7: देश भर में तीन राज्यों में उपचुनाव हुआ पश्चिम बंगाल तमिलनाडु और पांडिचेरी मैं आज देश की जनता को ये भी बताना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल तमिलनाडु और पांडिचेरी के चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई है नौगांव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 1,42,000 वोट से जीता जो
0: All right, Nisha Chaudhary, now that for the first time, and this is quite significant because Abhijit Dipke, Rahul Gandhi on record are saying it's one voice, one protest. Do you think that this alliance of sorts is going to work in the future?
8: In the future, we can't say. But certainly they're closing ranks. There were comments about this, that were they, you know, not moving in tandem in the last days because the CJP leaders went to Jantar Mantar after it was denotified, were picked up, put in judicial custody. And while Rahul Gandhi led that march, the India march, you know, what he called the Shivji Ki Barat, to the court, Supreme Court premises, which was huge. Their mobilization of the Congress party was quite something. Haven't seen that kind of thing in recent times. So I think, yeah, that they have to move in unity. Very simple. One, unity of the entire opposition, including the CJP, and two, the organizational heft that they show. Those are going to determine the results of the elections that are due next year, and the results of the elections will determine the kind of tempo, the mood that comes on after that. You know, at the moment, it's protests. Will this goodwill, protest, anger, dissatisfaction actually get converted into votes? That is the big question mark. But just one word on Ankita, you know, Rahul Gandhi going there. You know, I wish more and more and more and more politicians would go and handhold parents of, you know, somebody like Ankita. Very few have gone there, you know, whether they get justice, well, the CBI inquiry is going to be speeded up. Mm. At least it puts pressures. Politicians have forgotten how to go to the people, sit with them, offer them a glass of water. at India Gate. That those kind

0: कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगाया हुआ है.
1: गोइंग बियॉन्ड व्हाट्स सेड, गेटिंग टू द रियलिटी बिहाइंड द रेटोरिक.
0: एनीवन मैसेज ऑफ यूनिट
2: हमारा स्वामी जाके जे भाव हत्या कर ले ता दिल फांसी दवा तो छी.
0: ऑल्सो द पुलिस एक्शन,
1: टेकिंग क्वेश्चंस वेयर दे मैटर मोस्ट.
3: द क्वेश्चन इज लैंग्वेज की हम बात करें.
1: अर्जेंट, एग्जैक्ट, empathetic.
0: There is no fire escape. There is no alternative safety route.
1: Because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.
4: Hindustan mile, Hindustan se.
5: देश का टायर, जेके टायर.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे।
1: बोझे पेंट रंग

0: कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगाया हुआ है.
1: गोइंग बियॉन्ड व्हाट सेड, गेटिंग टू द रियलिटी बिहाइंड द रेटोरिक.
0: एनीवन मैसेज ऑफ यूनिट
2: हमार स्वामी जाके जे भाव हत्या कर ले ताबे फांसी दवा तो छी.
0: ऑल्सो द पुलिस एक्शन,
1: टेकिंग क्वेश्चंस वेयर दे मैटर मोस्ट.
3: द क्वेश्चन इज लैंग्वेज की बात करें.
1: अर्जेंट, एग्जैक्ट, empathetic.
0: There is no fire escape. There is no alternative safety route.
1: Because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.
4: Rang rang rang rang rang rangine rang rangine re. Dekho kaise bhi ho din. Rang bana rahe.
5: Bojo paints. Rang bana rahe.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात.
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है.
8: अरे मेरे राजा.
9: सबका राजा आर्टियोर मसाला.
10: The only female bassist to be ranked among Music Radar's top 10 bassists of the 21st century. From India to the world stage, Mohini Day has made the bass her voice. Meet her at the NDTV World Summit. A World Between Orders, 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: everything around the game. Catch me, Gaurav Gala, on NDTV.
1: When it really matters. मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज़.

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा, रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।

0: ऑफ कॉन्डक्ट लगाया हुआ है.
1: गोइंग बियॉन्ड व्हाट सेड, गेटिंग टू द रियलिटी बिहाइंड द रेटोरिक.
0: एनीवन मैसेज ऑफ यूनिट
2: हमार स्वामी जाके जे भाव हत्या कर ले तब फांसी दवा तो छी.
0: ऑल्सो द पुलिस एक्शन,
1: टेकिंग क्वेश्चंस वेयर दे मैटर मोस्ट.
0: द क्वेश्चन इज लैंग्वेज की बात करें.
1: अर्जेंट, एग्जैक्ट, empathetic.
0: There is no fire escape. There is no alternative safety route.
1: Because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.
3: Guys, मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. Any suggestions? जीवन स्मॉल फाइनेंस में. Small?
4: Small? अब पूरी पिक्चर देख लो. Loan options, big. Savings or FDP interest, big. Branch network, big. Agar small hota, toh main saad mein hota. Ujjivan, nothing small about us.
5: Rang rang rang rang rang rangine, rang rangine re. Dekho kaise bhi ho din, rang bana rahe.
6: Bojo paints, rang bana rahe.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात.
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है.
9: अरे मेरे राजा.
10: सबका राजा आग प्योर मसाला.
11: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट.
4: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
11: स्मॉल बैंक,
4: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business edge current account, business maxima business privilege rdf, there's nothing small about them.
11: Okay.
4: Ujjivan, nothing small about us.

0: Well, Muskan Rastogi and her lover Sahil Shukla have been given the death sentence by a local court in Meerut for the murder of a Merchant Navy officer Saurabh Rajput last year. Muskan and Sahil were convicted 2 weeks ago with the sentence pronounced on Wednesday. A concrete-filled blue plastic drum became the motive and the most crucial evidence of the murder case. After 126 hearings and 22 witness statements, District Judge Arvind Kumar Mishra ruled that Rastogi and Shukla conspired to kill Saurabh Rajput and concealed his dismembered body inside a blue industrial drum using concrete and sand. The judge had commented that such crimes create fear in society at large. In the morning, Muskan Rastogi's parents told the court that Saurabh Rajput was a very good person and if the guilty are sentenced to death, we will not protest. Muskan Rastogi's family never met her in prison. On March 3, 2025, Muskan Rastogi sedated her husband at the Indira Nagar home by lacing his food. As per the police, that is. Her lover Sahil Shukla arrived shortly after and the duo stabbed Rajput to death. Apart from that, they then fled to Himachal Pradesh the next day. Rastogi used Rajput's mobile phone to send text messages to his family members, creating an illusion that he was alive and travelling for business.
1: हम तो बहुत संतुष्ट हैं भैया इस फैसले को लेकर हम तो चाहते हैं जो आगे जो क्राइम बढ़ रहा है आगे भी इस क्राइम की जो भी मृत्युदंड की सजा है उन लोगों को भी वही मिलनी चाहिए
2: अच्छा इस फैसले का करीब एक साल तक आपने इंतजार किया ये वक्त कितना मुश्किल था आपके लिए एक साल तक आपने वेट किया कितना मुश्किल वक्त था आपके लिए
1: हमारे लिए तो चल ही रहा है और आगे भी हमारे लिए मुश्किल वक्त चलेगा ही क्योंकि हमारा तो बेटा नहीं है तो हमारा तो हर वक्त ही मुश्किल हर चीज़ पर छोटी छोटी चीज़ पर हर छोटे त्यौहार पर हर समय याद आएगा वो वैसे भी हर समय याद आता है घर में हर छोटी छोटी चीज़ को ये देखता था करता था वो
2: अच्छा मुस्कान की दो बेटियां हैं क्या दोनों बेटियों को आप स्वीकार करेंगे
1: नहीं हमारे तो बड़ी बेटी है बस खाली उसको हम लेंगे उसके नाना के विवाद के बिना लेंगे हम
2: अच्छा और छोटी बेटी
1: छोटी वाली को नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारे लड़के की नहीं है वो साहिल के परिवार को दी जाए या उसके नाना नानी को दी जाए
2: अच्छा ये लोग मतलब अगर ये लोग हाईकोर्ट जाते हैं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि जो बात कर रहे हैं जाने की तो उस पर आप लोग क्या करेंगे
1: हम भी जाएंगे हम भी न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे हमें पूरा इंसाफ चाहिए अगर वो जाते हैं तो हमें भी जाना है
2: आज कोर्टरूम में आप थी जब ये फैसला आया तो आपने आपको उम्मीद थी कि फांसी होगी या उम्र कैद होगी
1: नहीं हमें तो शुरू से ही वो है कि हमारे को तो इनको फांसी ही होनी चाहिए
2: अच्छा
3: बच्चों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं है अभी आदेश बाकी पूरा वर्णन चाहेंगे
4: दोनों को दोषी माना है अपराध हत्या का अपराधी जघन्य हत्या का अपराधी माना है 302 के लिए 50,000 जुर्माना है 238 के लिए 20,000 रुपए का जुर्माना है
5: क्या कहेंगे नजीर बन गया
4: बिल्कुल नजीर बन गया ये नजीर बनना चाहिए ही था अदालत ने हमारी भावनाओं को जनता की भावनाओं को और सारे अब तक के निर्णयों के भावनाओं को समझते हुए ये बहुत अच्छा निर्णय दिया गया
0: Well, CJP leaders Ashutosh Ranka and Saurabh Das have been sent to Tihar jail for 5 days after being arrested for protesting at Jantar Mantar. They were produced before magistrate at the SEM court located at Mandir Marg police station. Both the leaders were arrested on the charges of trespassing and violation of previous arrest bond. Remember, 14 Kokro Janta Party members were detained yesterday for trespassing and scaling walls of Jantar Mantar. CJP founder Bijay Dipke has spoken out on the arrest and called this a cowardly attack and an attempt to crush dissent. As per Delhi police, Saurabh Das and Ashutosh Ranka are repeat offenders and they've breached the bail bond as well.
6: इस देश में तिरंगा लहराना क्या अपराध है आशुतोष और सौरभ को 5 दिन के लिए जेल में भेजा गया है क्यों क्योंकि उन्होंने जंतर मंतर पर जाकर तिरंगा लहराया ऐसा आखिरी बार तब हुआ था जब हम पर अंग्रेजों का राज था
7: पता होगा आज आशुतोष सौरभ दास और मैं और हमारे साथ सीजीपी के वॉलंटियर्स हम जंतर मंतर की ओर गए थे और हमने बस भारत का झंडा लहराया और भारत माता की जय बोला तो इसके लिए इस मोदी शाह के तानाशाही सरकार ने सौरभ और आशुतोष को 5 दिन के लिए जेल में भेज दिया है ये तानाशाही सरकार का अंत होके रहेगा आज आशुतोष का बर्थडे था उसके बर्थडे के दिन उन्होंने भारत माता की जय और तिरंगा का झंडा लहराने के लिए उनको जेल में भेज दिया है मेरा ये पूरे देश की जनता से कहना है कि इस सरकार ने अपने सिस्टम का यूज करते हुए, अपने अधिकारों को गलत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट्स का तोड़ने की कोशिश शुरू की है। मेरा आपसे सबसे कहना है कि हम सबको एक साथ आकर इस तानाशाही सरकार का अंत करना होगा।
5: दिल्ली पुलिस की तरफ से ये दलील दी गई कि इन्होंने जो इनका बॉन्ड था उनका वायलेशन किया है, इनका उनका प्रेजम्पशन है कि ये फिर से ऐसा कर सकते हैं और जो इन्होंने किया है वो कानून का उल्लंघन है, 163 का उल्लंघन है। उनके हिसाब से पहली बार एक उनका कहना है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को ट्रेसपास किया गया है विदाउट प्राइवेट कंप्लेन एंड फाइलिंग दी कंप्लेंट। दिल्ली पुलिस ने खुद कॉग्निजेंस ले लिया है और उसके अगेंस्ट में एक्शन लेके और जिस केस के रेफरेंस में या जो उसके लिए सेपरेट कंप्लेंट फाइल हुई है, जो बताया गया है कि कनॉट प्लेस में उसमें सेपरेट कंप्लेंट फाइल हुई है, उसको यहाँ पे यूज़ करते हुए, इसका मिसयूज़ करते हुए अपनी पावर अथॉरिटी का 5 दिन की जेसी में भेजा है।
0: Bulldozer action has been taken against the chemist shop owner. We're talking about Ashwini Kumar, who killed anti-drug activist Parvinder Singh Jota. Police and local administration bulldozed his shop and locals set it on fire over killing of an anti-drugs activist. Accused chemist Ashwini Kumar has also been arrested. Anti-drug activist Parvinder Singh Jota was shot dead by medical store owner after he confronted him for allegedly selling drugs in Punjab's Mansa. Meanwhile, a political row has erupted over murder of anti-drug activist. Punjab Congress has released a video and claimed that when anti-drug activist was murdered, Punjab CM Bhagwant Mann was attending a convocation ceremony. Opposition leaders, including the BJP, have slammed Mann government over the murder and condemned the law and order conditions in the state.
8: It has been seen all the opposition political parties, they are raising multiple questions over law and order situation because of this murder which has already sparked a political row. Right now we are reporting from Mansa. I'll request my Vijay to show all these pictures. It has been seen that social activists, they have been demanding a demolition of the house of the accused and the police are following all the process here. We can see all these pictures. JCB machine has already been brought in front of the house of the accused. This house belongs to accused Ashwini Kumar, who has already been arrested by the police from Rajasthan, and after that it has been seen a lot of pressure had been mounted over the local administration as well as the local police that no action has been taken against Ashwini Kumar, and now it has been seen that the police are trying to control the situation here. They are trying to follow this guidelines for demolishing this house. We are showing all these pictures from Mansa at this point of time. It has been seen that all the opposition political parties, they say the way this murder has been taken place in broad daylight, it exposes the law and order situation in the state of Punjab, and they had also blamed and made the state government responsible.
9: Parminder ne ek da ke nasha taskaran de khilaf ladai ladi. ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਤਾਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਫਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਹੇਗੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏਗੀ।
10: ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਮਾਨਸਾ ਮੇਂ परमिंदर चोटा जो एक एंटी ड्रग एक्टिविस्ट था उसको गोली मार के हत्या कर दी। कोई ऐसा दिन नहीं है पंजाब में, सुबह उठते हैं तो ये पता चलता है कि इतने आदमियों गोलियों से मार दिए गए। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी हालत है। नशे तो मुद्दे तो बहुत है पंजाब के, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा नशा।
0: Anyway, we're slipping into a very short, quick break, but come right back, lots more lined up for you.
11: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah. NDTV stands completely engaged with Karnataka.
12: High rate, check the audio.
11: Let's do it.
13: Breaking story, we're jumping straight into it.
11: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
14: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
11: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling. 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
14: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
12: High rate, check the audio.
11: Let's do it.
13: Breaking story, we're jumping straight into it.
11: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can

0: hidden and sealed chopped body with cement now gets death sentence along with her lover. Canada Foreign Minister Anita Anand meets Prime Minister Modi. Holds talks and opportunities ahead for trade, investment and security. Anand speaks only to NDTV, calls reset of ties a welcome transition. Well, a blue plastic drum, a gruesome murder and now a death sentence. The Meerut murder case is back in spotlight, but the question is, it's not only the crime involving a seemingly ordinary pattern. From Madhya Pradesh to Maharashtra, disturbing cases have emerged, different victims, different circumstances, but a chilling pattern. Here's more.
1: A blue plastic drum, a murder that shocked the nation, and now a death sentence. Saurabh Rajput, a former Merchant Navy officer, was killed in Meerut in March 2025. His wife Muskan Rastogi and her lover Sahil Shukla were accused of conspiring to murder him. The case went through 126 hearings with 22 prosecution witnesses examined. However, the Meerut case was not the only murder involving a blue drum. In October 2025, in Dewas in Madhya Pradesh, the body of 22-year-old Lakshita Chaudhary was found after she was allegedly drowned in a drum of water. The accused, identified as Monu, also known as Manoj Chauhan, surrendered to the police. Not just that, in May this year, another case emerged of Maharashtra's Mumbai, where the police arrested a woman accused of killing her partner with the help of a relative and placing it in a blue drum. And in January this year, a separate case in Jhansi, which involved a retired railway employee accused of killing a woman and attempting to dispose of her remains in a blue trunk. In all these cases, the circumstances differ from case to case. The victims' alleged motives and methods of killing are not identical. However, what connects these cases is the attempt to conceal a death, using ordinary household or industrial containers to hide human remains and delay discovery. The bigger question is if the repeated use of drums and containers point to a new criminal trend, and has the blue drum become a chilling symbol? Behind every headline is a victim and a family waiting for answers. Vishnu Shom for NDTV.
0: Well, Muskan Rastogi and her lover Sahil Shukla have been given the death sentence by a local court in Meerut for the murder of a Merchant Navy officer, Saurabh Rajput, last year. Muskan and Sahil were convicted 2 weeks ago, with the sentence pronounced on Wednesday. A concrete-filled blue plastic drum became the motive and the most crucial evidence of the murder case. After 126 hearings and 22 witness statements, District Judge Arvind Kumar Mishra ruled that Rastogi and Shukla conspired to kill Saurabh Rajput and concealed his dismembered body inside a blue industrial drum using concrete and sand. The judge had commented that such crimes create fear in society at large. In the morning, Muskan Rastogi's parents told the court that Saurabh Rajput was a very good person and if the guilty are sentenced to death, we will not protest. Muskan Rastogi's family never met her in prison. On March 3, 2025, Muskan Rastogi sedated her husband at the Indira Nagar home by lacing his food, as per the police that is. Her lover Sahil Shukla arrived shortly after and the duo stabbed Rajput to death. Apart from that, they then fled to Himachal Pradesh the next day. Rastogi used Rajput's mobile phone to send text messages to his family members, creating an illusion that he was alive and travelling for business.
2: हम तो बहुत संतुष्ट हैं भैया इस फैसले को लेकर हम तो चाहते हैं जो आगे जो क्राइम बढ़ रहा है आगे भी इस क्राइम की जो भी मृत्युदंड की सजा है उन लोगों को भी वही मिलनी चाहिए
3: अच्छा इस फैसले का करीब एक साल तक आपने इंतजार किया ये वक्त कितना मुश्किल था आपके लिए एक साल तक आपने वेट किया कितना मुश्किल वक्त था आपके लिए
2: हमारे लिए तो चल ही रहा है और आगे भी हमारे लिए मुश्किल वक्त चलेगा ही क्योंकि हमारा तो बेटा नहीं है तो हमारा तो हर वक्त ही मुश्किल हर चीज़ पर छोटी छोटी चीज़ पर हर छोटे त्यौहार पर हर समय याद आएगा वो वैसे भी हर समय याद आता है घर में हर छोटी छोटी चीज़ को ये देखता था करता था वो।
3: अच्छा, मुस्कान की दो बेटियां हैं, क्या दोनों बेटियों को आप स्वीकार करेंगे?
2: नहीं, हमारे तो बड़ी बेटी है बस, खाली उसको हम लेंगे, उसके नाना के विवाद के बिना लेंगे हम।
3: अच्छा, और छोटी बेटी?
2: छोटी वाली को नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारे लड़के की नहीं है, वो साहिल के परिवार को दी जाए या उसके नाना नानी को दी जाए।
3: अच्छा, ये लोग मतलब अगर ये लोग हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि जो बात कर रहे हैं जाने की, तो उस पर आप लोग क्या करेंगे?
2: हम भी जाएंगे, हम भी न्याय लेकर दरवाजा खटखटाएंगे, हमें पूरा इंसाफ चाहिए। अच्छा। अगर वो जाते तो हमें भी जाना है।
3: आज कोर्ट रूम में आप थी जब ये फैसला आया, तो आपको उम्मीद थी कि फांसी होगी या उम्र कैद होगी?
2: नहीं, हमें तो शुरू से ही वो है कि हमारे को तो इनको फांसी ही होनी चाहिए।
3: अच्छा,
4: बच्चों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं है, अभी आदेश बाकी पूरा वर्णन चाहेंगे। दोनों को दोषी माना है, अपराध हत्या का अपराधी माना है, हत्या का अपराधी माना है। 302 के लिए 50,000 जुर्माना है, 238 के लिए 20,000 रुपए का जुर्माना है।
5: क्या कहेंगे, नजीर बन गया?
4: बिल्कुल नजीर बन गया, ये नजीर बनना चाहिए ही था। अदालत ने हमारी भावनाओं को, जनता की भावनाओं को और सारे अब तक के निर्णयों के भावनाओं को समझते हुए ये बहुत अच्छा निर्णय दिया गया है।
0: Well, CJP leaders Ashutosh Ranka and Saurav Das have been sent to Tihar jail for 5 days after being arrested for protesting at Jantar Mantar. They were produced before magistrate at the SEM court located at Mandir Marg police station. Both the leaders were arrested on the charges of trespassing and violation of previous arrest bond. Remember, 14 Kokro Janta Party members were detained yesterday for trespassing and scaling walls of Jantar Mantar. CJP founder Bijay Dipke has spoken out on the arrest and called this a cowardly attack and an attempt to crush dissent. As per Delhi police, Saurav Das and Ashutosh Ranka are repeat offenders and they've breached the bail bond as well.
6: इस देश में तिरंगा लहराना क्या अपराध है? आशुतोष और सौरभ को 5 दिन के लिए जेल में भेजा गया है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जंतर मंतर पर जाकर तिरंगा लहराया। ऐसा आखिरी बार तब हुआ था जब हम पर अंग्रेजों का राज था। पता होगा, आज आशुतोष, सौरभ दास और मैं और हमारे साथ सीजीपी के वॉलंटियर्स हम जंतर मंतर की ओर गए थे और हमने बस भारत का झंडा लहराया और भारत माता की जय बोला। तो इसके लिए इस मोदी शाह के तानाशाही सरकार ने सौरभ और आशुतोष को 5 दिन के लिए जेल में भेज दिया है। ये तानाशाही सरकार का अंत होके रहेगा। आज आशुतोष का बर्थडे था, उसके बर्थडे के दिन उन्होंने भारत माता की जय और तिरंगा का झंडा लहराने के लिए उनको जेल में भेज दिया है। मेरा ये पूरे देश की जनता से कहना है कि इस सरकार ने अपने सिस्टम का यूज करते हुए, अपने अधिकारों को, गलत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट्स का तोड़ने की कोशिश शुरू की है। मेरा आपसे सबसे कहना है कि हम सबको एक साथ आकर इस तानाशाही सरकार का अंत करना होगा।
7: दिल्ली पुलिस की तरफ से ये दलील दी गई कि इन्होंने जो इनका बॉन्ड था उनका वायलेशन किया है, इनका उनका प्रेजम्पशन है कि ये फिर से ऐसा कर सकते हैं और जो इन्होंने किया है वो कानून का उल्लंघन है, 163 का उल्लंघन है। उनके हिसाब से पहली बार एक किसी उनका कहना है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को ट्रेसपास किया गया है विदाउट प्राइवेट कंप्लेन एंड फाइलिंग दी कंप्लेंट। दिल्ली पुलिस ने खुद कॉग्निजेंस ले लिया है और उसके अगेंस्ट में एक्शन लेके और जिस केस के रेफरेंस में या जो उसके लिए सेपरेट कंप्लेंट फाइल हुई है, जो बताया गया है कि कनॉट प्लेस में उसमें सेपरेट कंप्लेंट फाइल हुई है, उसको यहाँ पे यूज़ करते हुए, इसका मिसयूज़ करते हुए अपनी पावर अथॉरिटी का 5 दिन की जेसी में भेजा है।
0: Bulldozer action has been taken against the chemist shop owner. We are talking about Ashwini Kumar, who killed anti-drug activist Parvinder Singh Jota. Police and local administration bulldozed his shop and locals set it on fire over killing of an anti-drugs activist. Accused chemist Ashwini Kumar has also been arrested. Anti-drug activist Parvinder Singh Jota was shot dead by medical store owner after he confronted him for allegedly selling drugs in Punjab's Mansa. Meanwhile, a political row has erupted over murder of anti-drug activist. Punjab Congress has released a video and claimed that when anti-drug activist was murdered, Punjab CM Bhagwant Mann was attending a convocation ceremony. Opposition leaders, including the BJP, have slammed Mann government over the murder and condemned the law and order conditions in the state.
5: it has been seen all the opposition political parties, they are raising multiple questions over law and order situation because of this murder which has already sparked a political row. Right now we are reporting from Mansa. I'll request my Vijay to show all these pictures. It has been seen that

0: आप स्वीकार करेंगे?
1: नहीं, हमारे तो बड़ी बेटी है बस, खाली उसको उसको हम लेंगे, उसके नाना के विवाद के बिना लेंगे हम।
0: अच्छा, और छोटी बेटी?
1: छोटी वाली को नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारे लड़के की नहीं है, वो साहिल के परिवार को दी जाए या उसके नाना नानी को दी जाए।
0: अच्छा, ये लोग मतलब अगर ये लोग हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि जो बात कर रहे हैं जाने की, तो उस पर आप लोग क्या करेंगे?
1: हम भी जाएंगे, हम भी न्याय लेकर दरवाजा खटखटाएंगे, हमें पूरा इंसाफ चाहिए। अगर वो जाते तो हमें भी जाना है।
0: आज कोर्ट रूम में आप थी जब ये फैसला आया, तो आपने आपको उम्मीद थी कि फांसी होगी या उम्र कैद होगी?
1: नहीं, हमें तो शुरू से ही वो है कि हमारे को तो इनको फांसी ही होनी चाहिए।
0: अच्छा,
2: बच्चों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं है, अभी आदेश बाकी पूरा वर्णन चाहेंगे। दोनों को दोषी माना है, अपराध हत्या का अपराधी माना है, हत्या का अपराधी माना है। 302 के लिए 50,000 जुर्माना है, 238 के लिए 20,000 रुपए का जुर्माना है।
3: क्या कहेंगे, नजीर बन गया?
2: बिल्कुल नजीर बन गया, ये नजीर बनना चाहिए ही था। अदालत ने हमारी भावनाओं को, जनता की भावनाओं को और सारे अब तक के निर्णयों के भावनाओं को समझते हुए ये बहुत अच्छा निर्णय दिया गया है।
4: Well, CJP leaders Ashutosh Ranka and Saurav Das have been sent to Tihar jail for 5 days after being arrested for protesting at Jantar Mantar. They were produced before magistrate at the SEM court located at Mandir Marg police station. Both the leaders were arrested on the charges of trespassing and violation of previous arrest bond. Remember, 14 Kokro Janta Party members were detained yesterday for trespassing and scaling walls of Jantar Mantar. CJP founder Bijay Dipke has spoken out on the arrest and called this a cowardly attack and an attempt to crush dissent. As per Delhi police, Saurav Das and Ashutosh Ranka are repeat offenders and they've breached the bail bond as well.
5: इस देश में तिरंगा लहराना क्या अपराध है? आशुतोष और सौरभ को 5 दिन के लिए जेल में भेजा गया है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जंतर मंतर पर जाकर तिरंगा लहराया। ऐसा आखिरी बार तब हुआ था जब हम पर अंग्रेजों का राज था। पता होगा, आज आशुतोष, सौरभ दास और मैं और हमारे साथ सीजीपी के वॉलंटियर्स, हम जंतर मंतर की ओर गए थे और हमने बस भारत का झंडा लहराया और भारत माता की जय बोला। तो इसके लिए इस मोदी शाह के तानाशाही सरकार ने सौरभ और आशुतोष को 5 दिन के लिए जेल में भेज दिया है। ये तानाशाही सरकार का अंत होके रहेगा। आज आशुतोष का बर्थडे था, उसके बर्थडे के दिन उन्होंने भारत माता की जय और तिरंगा का झंडा लहराने के लिए उनको जेल में भेज दिया है। मेरा ये पूरे देश की जनता से कहना है कि इस सरकार ने अपने सिस्टम का यूज करते हुए, अपने अधिकारों को, गलत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट्स का तोड़ने की कोशिश शुरू की है। मेरा आपसे सबसे कहना है कि हम सबको एक साथ आकर इस तानाशाही सरकार का अंत करना होगा।
6: दिल्ली पुलिस की तरफ से ये दलील दी गई कि इन्होंने जो इनका बॉन्ड था उनका वायलेशन किया है, इनका उनका प्रेजम्पशन है कि ये फिर से ऐसा कर सकते हैं और जो इन्होंने किया है वो कानून का उल्लंघन है, 163 का उल्लंघन है। उनके हिसाब से पहली बार एक किसी, उनका कहना है कि पब्लिक बॉडी, पब्लिक प्रॉपर्टी को ट्रेसपास किया गया है विदाउट प्राइवेट कंप्लेन एंड फाइलिंग दी कंप्लेंट। दिल्ली पुलिस ने खुद कॉग्निजेंस ले लिया है और उसके अगेंस्ट में एक्शन लेके, और जिस केस के रेफरेंस में या जो उसके लिए सेपरेट कंप्लेंट फाइल हुई है, जो बताया गया है कि कनॉट प्लेस में उसमें सेपरेट कंप्लेंट फाइल हुई है, उसको यहाँ पे यूज़ करते हुए, इसका मिसयूज़ करते हुए अपनी पावर अथॉरिटी का 5 दिन की जेसी में भेजा है।
4: Bulldozer action has been taken against the chemist shop owner. We're talking about Ashwini Kumar, who killed anti-drug activist Parvinder Singh Jota. Police and local administration bulldozed his shop and locals set it on fire over killing of an anti-drugs activist. Accused chemist Ashwini Kumar has also been arrested. Anti-drug activist Parvinder Singh Jota was shot dead by medical store owner after he confronted him for allegedly selling drugs in Punjab's Mansa. Meanwhile, a political row has erupted over murder of anti-drug activist. Punjab Congress has released a video and claimed that when anti-drug activist was murdered, Punjab CM Bhagwant Mann was attending a convocation ceremony. Opposition leaders, including the BJP, have slammed Mann government over the murder and condemned the law and order conditions in the state.
3: it has been seen all the opposition political parties, they are raising multiple questions over law and order situation because of this murder which has already sparked a political row. Right now we are reporting from Mansa. I'll request my Vijay to show all these pictures. It has been seen that social activists, they have been demanding a demolition of the house of the accused, and the police are following all the process here. We can see all these pictures. JCB machine has already been brought in front of the house of the accused. This house belongs to accused Ashwini Kumar, who has already been arrested by the police from Rajasthan. And after that, it has been seen a lot of pressure had been mounted over the local administration as well as the local police that no action has been taken against Ashwini Kumar. And now it has been seen that the police are trying to control the situation here. They are trying to follow this guidelines for demolishing this house. We are showing all these pictures from Mansa at this point of time. It has been seen that all the opposition political parties, they say the way this murder has been taken place in broad daylight, it exposes the law and order situation in the state of Punjab, and they had also blamed and made the state government
7: responsible. ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਤਾਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਫਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਹੇਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏਗੀ।
8: ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਮਾਨਸਾ ਮੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਜੋ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦਾ ਉਸਕੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਸੁਬਹਾ ਉੱਠਤੇ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਕਿ ਇਤਨੇ ਆਦਮੀ ਗੋਲੀਆਂ ਸੇ ਮਾਰ ਦੀਏ ਗਏ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਸੇ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ਾ।
4: Anyway, we're slipping into a very short, quick break, but come right back, Lost for Mind.
9: Going beyond what's said, getting to the reality behind the rhetoric.
10: Also, the police action.
9: Taking questions where they matter most.
11: The question is, language ke baat kare.
9: Urgent, exact, empathetic.
12: There is no fire escape. There is no alternative safety route.
9: Because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.
13: The only female bassist to be ranked among Music Radar's top 10 bassists of the 21st century. From India to the world stage, Mohini Day has made the bass her voice. Meet her at the NDTV World Summit, a world between orders, 22nd and 23rd October, New Delhi.